0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौ। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
1: अनुरोधक डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, गौतम दत्त, चन्द्रौटा, कपिलवस्तु।

0: पटक बैंक अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री
1: के छ हो दुर्नुस भाई भाले बोकेर कता
2: भाकल
1: के को भाकल हो
2: सुन्तलीका जिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झन्झम गर्छ भन्छ जान्नेलाई देखाएको देउताकै श्राप लागेर यस्तो भाकल त्यसैले भाले चढाउन
1: यस्तो पनि हुन्छ
2: भाडा हिँड्न ल हेर्नुहोस्
1: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ शरीरमा यस्तो रातो फुटो दाग देखिनु अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु शरीरमा गिर्खार देखा पर्नु दागमा छुँदा थाहा नपाउनु मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन् तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्
2: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त
1: यो देउताको होइन किटाणुको करामत हो
3: भाकल साकल छोडौँ धुर्मु उहाँले भने आफै जताएर औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि
4: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गराउ अङ्गभङ्ग हुनबाट बचाऊ
5: जनहितका लागि जारी सन्देश नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग
6: अरे सुन जाएन के भयो अस्तर के भयो हामीले साथीको साँप
7: काट्यो बहिनी आप कहाँ चिल्ला बजा छ अरे यो भुइँमै के हो
6: सुन जाएन भैया हमरे दोनों जनी का हाथ काटे आ रहे हमरे साथी का सांप काट ली अब कहा कर रहे एक जल्दी उपचार केंद्र पहुँचा मिल तो ठीक रहा
7: ओहो ऐसा समय पर एम्बुलेंस और चार चक्का गाड़ी खोज के अगोर के नए बैठे चाहिए यह नक्चरवे के गांव में हमारे एक जने मोटरसाइकिल भवा साथी हैं फोन करी थे हम आप न घबरावा जाए साथी का ध्यान दिया जाए हेलो मुकेश तू तुरंत मोटरसाइकिल लेके यहाँ आओ तो यहाँ एक जनी बहनी का सांप काट ली है इमरजेंसी होगा तुरंत उपचार केंद्र ले जाक पड़ा राजमार्ग चौराहा से 100 मीटर पच्छू बायोवरहन हमरे मुकेश जल्दी आओ ना सब काम छोड़ के
8: होता है संतोष हम मोटरसाइकिल लेके चले आए
7: सुना जाए बहनी सांप काट लिया व्यक्ति का जितना हो सके उतना जल्दी एंटी वेनम उपलब्ध रहा स्वास्थ्य केंद्र में ले जाक चाहिए ऐसे समय पर जल्दी होने वाला यातायात के साधन छनौट करे के चाहिए यदि मोटरसाइकिल की व्यवस्था है तो अपने और सवारी चालक के बीच में सांप काट लिए व्यक्ति का सुरक्षित हुए मेर से तुरंत उपचार केंद्र पहुँचावे के चाहिए वो देखो मुकेश मोटरसाइकिल लेके आएगा हमारे विश्वसनीय साथी है हम तुरंत बीमरिया का अपने और मुकेश के बीच में रख के मोटरसाइकिल से उपचार केंद्र पहुँचाए थे आप हमारे साइकिल लेके वहरे आवाज
6: होते भैया बहुत ही सहयोग करा गए चला जाए जल्दी चला जाए
9: याद रखा जाए सांप के डसे के बाद मोटरसाइकिल स्वयंसेवी बुलावा जाए सर्पदंश उपचार केंद्र जाए के जान बचावा जाए
10: यदि समय पर उपचार कई मिले पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचा सका जाता है और इससे होए वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है सांप डस लिए व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए ये वह व्यक्ति के जीवन बचावे बहुत मदद करत है
7: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
12: मेरो त घर बनाउने धोको पनि अरूको देख्दा देख्दै सकियो त्यो हरिदाईको घर हेर्दा राम्रो भएर के गर्नु धाराका पाइपहरू सबै फुटेर नुहाउने बाथरूम किचन टोयलेट गइसक्नु छैन मलाई त झन् केही थाहा छैन कस्ता पाइप धारा ठिक हुन्छन् फेरि त्यति मात्र भएर पनि भएन छड सिमेन्ट पनि चाहियो साह्रै तनावको काम रहेछ
13: हजुर यस क्षेत्रकै विभिन्न क्वालिटी युक्त हार्डवेयर सामानका लागि ग्रिसमा सप्लायर्स सबैको रोजाइमा रहेको पञ्चकन्याका सिटीडीसी पाइप फिटिङका सामानहरू धाराका आइटम अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका छड सिमेन्ट पानी ट्याङ्की कम्बट सिटहरू मार्बल सोमानी कम्पनीका टाइल होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ
12: हजुरलाई समय पनि कम लाग्ने हरेक सामानहरू फिट गर्न सजिलो हुने पाइपहरूमा खिया लाग्ने र चुहिने समस्याको समाधान
14: सुन्नुहोस् त हामी कहाँ टाइल ग्रेनाइट भेन गाडो बाथ फिटिङ सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है।
13: सम्पर्क ग्रीष्मा सप्लाइज बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु फोन 076550317 मोबाइल 98571713। संचालक गिरिराज कणे।
15: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
16: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्नी नस तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
15: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाड जोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यापिएको, भाँचिएको, हाड जोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
16: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल श्रवण पथ बुटवल साझा हस्पिटलको अगाडि।
15: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570178010।

0: दुई पटक बैंक अफ द ईयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटीजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटीजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।
1: ए रजनी, वही लंबा डंडा है, जल्दी लेके आओ तो।
2: अरे ये मुर्गी का दाना देख समय पर आप कहे डंडा खोजा जाता
1: है? एक ठू सांप है मुर्गी के फार्म लगे, ओका डंडा से डरवाई के भगावे के पड़ा, जल्दी लाओ ना।
2: अरे सांप का नहीं चला चाहिए ना, नहीं तो हमरे का डस सकत है, रह दिया जाए, बल्कि घर भीतर आए तो भगाओ खोई।
1: रजनी, फार्म में हल्के मुर्गी मार दे और खाई ले, यही नाते भगावे के चाहत रहे।
2: फार्म में कीड़ा मकोड़ा मूस सांप न हले कह के तार जारी लगाए हन, सांप मुर्गी के नुकसान ना करी, बल्कि आप खाना डसी ले, दूर रह जाए।
1: ए सही कहे, का करें, सांप देख के बाद डर लग जाते है। अरे सांप तो लौट के बेरवा के ओर चले गए।
2: हमरे घर नाई सपन से डरावा जाता है, ओनरियो हमरे से डरात है, यदि केहू जान अनजान में चलावत के प्रतिरक्षा करे के या आपन बचाव करे के खातिर सांप डसत है।
3: सांप से दूर रहा जाए, सांप का न चलावा जाए या न चिढ़ावा जाए, सांप आदमी से डरात है, न चलाई के दूर रहे पर सांप न ही डसी, लेकिन वो सब खाना के खोजी में बाहरे निकला समय पर घास काटत के खेलत के चलत के छुई गए पर आदमी आक्रमण करत है, सोच के प्रतिरक्षा करे के क्रम में सांप डसत है, आदमी सांप देखते भरे में मारे लागत है, ऐसन करत के सांप डस लेत है।
4: सर्पदंश से संबंधी विश्वसनीय जानकारी के खातिर और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
5: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: के छ हो धुनुस भाई, भाले बगेर कता
7: भाकल
6: के भो भाकल हो?
7: सुन्तालीका जिउमा दाग आएर हात खुट्टा पनि झमझम गर्छ भन्छ, जान्नेलाई देखाएको देउताको श्राप लागेर यस्तो भएको रे, त्यसैले भाले चलाउन
6: यस्तो पनि हुन्छ
7: नपाचार भएर हिँड्न ल हेर्नुहोस् त,
6: यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ, शरीरमा यस्तो रातो चुसो दाग देखिनु, अनुहारको छाला तथा कानको लुती बाक्लो हुनु, शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, दागमा छुँदा थाहा नपाउनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्।
7: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त?
6: यो देउताको होइन, कीटाणुको करामत हो।
8: भाकल साकल छोडौँ धुर्मु, उहाँले भने जस्तै जतार औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि।
9: कुष्ठरोगको समयमै उपचार गराउ, अङ्गभङ्ग हुनबाट बचाऊ बचाऊ।
10: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।
11: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
12: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्नी नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
11: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुतो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाडजोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यातिएको, भाँचिएको, हाडजोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
12: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल, श्रवण पथ बुटवल, साझा हस्पिटलको अगाडि।
11: सम्पर्क नम्बर 071534905, 071553905 र मोबाइल 98570078010।
13: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री FE550D ले एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ।
6: नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठूलो भूकम्प आउँछ।
14: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।

0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए म चाहिँ

0: शान्ति र विकासको आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: क्यान्सरको सम्पूर्ण उपचार विराटनगरमै, सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार, शल्यक्रिया, रेडिएसन सहित न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छ। नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुई तर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो पुग्नु पर्दैन। विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर 1 क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 97160025230।
2: के छ हो धुनुस भाइ, भाले बोकेर कता? यस्तो पनि हुन्छ, यो त कुष्ठरोगको लक्षण जस्तो छ। शरीरमा यस्तो रातो फुसो दाग देखिनु, अनुहारको छाला तथा कानको लुटी बाक्लो हुनु, शरीरमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, दागमा छुँदा थाहा नपाउनु, मांसपेशीहरू कमजोर हुनु कुष्ठरोगका लक्षणहरू हुन्। तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराइहाल्नुहोस्।
3: तर जान्नेले त यो देउताको करामत भन्छ त?
2: यो देउताको होइन, कीटाणुको करामत हो।
4: भाकल साकल छोड्नु धुर्मु, उहाँले भने जस्तै जता र औषधि खान थालिहाल्नु पर्छ कि?
5: कुष्ठ रोगको समयमै उपचार गरौ, अङ्गभङ्ग हुनबाट बचौं, बचाऊ।
6: जनहितका लागि जारी सन्देश, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग।
7: अम्मा रात है, कहाँ जाओ जाते?
8: पिसाब लाग रहा सर, पिसात रहे।
7: ए रुका जाए तब, हम टॉर्च लाइट और डंडा लाए दे थे, लेके जावा जाए।
8: कहीं बिटिया डंडा और टॉर्च लाइट?
7: अम्मा रात के समय में बहरे निफरत के या टॉयलेट जात के हमेशा टॉर्च लाइट बार के और लम्बा डंडा लेके भर जाए चाहिए। काहे कि बरसात के समय है, आसपास साफ हो सकत है, टॉर्च के अंजोर से साफ दिखाई जाए है और डंडा के टक टक आवाज सुन के भाग जाए है।
8: हाँ बेटिया, तू कितना बढ़िया सलाह दी हमको।
7: अम्मा हमरे का स्कूल में मैडम सर लोग सांप लुकाए सके वाला जगह के आसपास से चलक पड़े या काम करक पड़ा तो हमेशा होशियार होए के चाहिए कहके सिखाए है। और धान खेत, झाड़ी अथवा बड़वार घास रहा जगह पर चलक पड़ा तो लम्बा डंडा लाठी लेके टक टक आवाज करत चलक चाहिए कहीं है।
9: बरसात के समय में सांप सूखा जगह पर रह के पसंद करत हैं। अपने वास स्थान में पानी हल जाए के नाते सूखा जगह के खोजी में वो लोग बाहरे निकल सकत है।
10: मूस मुर्गी जिस चारा के खोजी करे क्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आ सकत है।
11: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगाए आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
12: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
13: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू।
14: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटु रोग, मृगौला रोग, पेट र आन्द्राको समस्या, कलेजो, थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
13: हाड जोड्ने नसा तथा बाथ रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या, हड्डी भाँचिएको, रजहरू राख्ने निकाल्ने, नसा च्यापिएको लगायत बाथ रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ। वरिष्ठ फ्यामिली फिजिसियन तथा जीपी सर्जन डाक्टर पूर्ण बहादुर घरती द्वारा विशेषज्ञ सेवा सहित मेजर तथा माइनर अपरेशनहरू, पाठेघर फाल्ने, चिरेर बच्चा निकाल्ने, नर्मल डेलिभरी सेवा, एपेन्डिसाइटिस, हाइड्रोसिल हर्निया, पित्तथैलीको ढुङ्गा निकाल्ने लगायतको साना तथा ठुला अपरेशनहरू वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा अन्य ओपीडी सेवा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म डाक्टर योगेन्द्र थापाद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा
14: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु सम्पर्क 076-550-200 मोबाइल नम्बर 98-570-55-138
13: अब ढुक्क हुनुहोस् विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै
15: लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवलमा आधुनिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको अनुरोध
16: बुटवलमै पहिलो पटक शरीरको कुनै अङ्गको लिगामेन्ट च्यातिएको स्पोर्ट्स इन्जुरीज साथै हाड जोर्नी नसा तथा ट्रमा वा दुर्घटना सम्बन्धी बिरामीको उपचार बीएनबी हस्पिटल काठमाडौँबाट अर्थोस्कोपी सर्जरी र स्पोर्ट्स इन्जुरीमा फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टरबाट आधुनिक विशेषज्ञ सेवा सुरु भएको छ विशेष गरी हाड जोर्नी भाँचिएको लिगामेन्ट च्यातिएको बिरामीहरूको अपरेशन दूरबीनको माध्यमबाट गरिन्छ
15: साथै वीर अस्पताल नेम्स काठमाडौँका फिजिसियन डाक्टरबाट उपचार सेवा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट इको ईसीजी को माध्यमबाट मुटु तथा छाती रोगको उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदै पूर्ववत सेवाहरू
16: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा
15: स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा
16: जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ सेवा
15: शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा
16: दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ सेवा
15: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा
16: हिस्टो साइटो बायोप्सी हार्मोन जाँच गर्ने प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सहितको प्रयोगशाला
15: फिजियोथेरापी विशेषज्ञ सेवा
16: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहितको इन्डोर सेवा सञ्चालन भइरहेकोले निजी क्षेत्रको जेठो एस हस्पिटलबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ
15: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली फोन 071-531-641 र 535-641
17: अब तपाईँ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाजबाट सुन्न सक्नुहुनेछ

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz सुन्न नभुल्नुहोला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: फ्यान काँडो, बाथ फिटिङ, सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है।
1: सम्पर्क कृष्णा सप्लाइज, बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु। फोन 076550317, मोबाइल 9857151713। संचालक गिरिराज खरे।
2: हाँ आइगेन 7-10 लिए बीमारिया का धीरे धीरे लाए मिलत तो बढ़िया रहा।
3: अच्छा अच्छा एक छिन हमरे सहयोग कहके लावा जाते बल्कि मोटरसाइकिल घुमाई के एहर करा जाए।
2: होत है। अच्छा बीमारिया का धीरे धीरे हमरे पीछे बैठा हुआ जाए और एक जने बीमारिया का पकड़ के बैठा जाए उपचार केंद्र तक पहुँचावत के बीमारिया बेहोश हो सके के नाते पीछे से बैठे वाले व्यक्ति का पकड़े रह के चाहिए।
4: बीमार व्यक्ति का सुरक्षित हो के मेर पकड़ के बैठबे। सुनील जी आप जैसन मोटरसाइकिल स्वयं सेवक के कारण सर्पदंश के बीमार व्यक्ति का उपचार केंद्र ले जाए के सहज भवा है।
2: एम्बुलेंस और चार चक्का वाला सवारी की तुलना में मोटरसाइकिल सब जगह पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। कितना जगह पर तो हमरे जैसन मोटरसाइकिल स्वयं सेवक लोग हैं। आसानी से और जल्दी उपलब्ध हो पाए वाला बीमारिया का चार चक्का वाले सवारी साधन में सहज हो के मेर से सुताई के नक्चेरे के एंटी वेनम भवा उपचार केंद्र में ले जाए के चाहे।
3: अच्छा अच्छा आप लोग जावा जाए हम पल्ला बंद करके आई थे।
2: इनका डस लिए सांप के फोटो खींच लिया गया है तो वो लेके आवा जाए सांप के पहचान हो जाए और उपचार करत के आसान हो।
4: फोटो हमरे मोबाइल में है अब हमरे चला जाए नहीं तो देर हो जाए।
5: सांप डस लिए पर उपचार के खातिर मोटरसाइकिल चालक या मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग लिया जाए बीमारिया का अपने और मोटरसाइकिल चालक के बीच में सुरक्षित हुए के मेर से रखा जाए और नक्सरवे के एंटी वेनम उपलब्ध हुए वाले सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जावा जाए। सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल चालक का बुलावा जाए नक्सरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुंचावा जाए जीवन रक्षा करा जाए।
6: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जात है।
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
8: ओहो आज त धारामा कति धेरै धमिलो पानी आएछ है।
9: अब वर्षा लाग्न थाल्यो यस्तो पानीले त झाडा पखाला आउँ हैजा टाइफाइड जस्ता रोगहरू लाग्ने गर्दछ त्यसैले पिउने पानी शुद्धिकरण गरेर मात्र पिउनु पर्दछ नि।
8: हैन छोरी यो शुद्धिकरण भनेको त के रहेछ।
9: पानी शुद्धिकरण भनेको पानीलाई राम्ररी उमाल्ने वा फिल्टर गर्ने सेतो प्लास्टिकको बोतलमा घाममा राख्ने औषधिहरू राखी पानीलाई निर्मलीकरण गर्ने विधि हो नि काका। त्यति मात्र होइन पानी राख्ने भाँडो सफा हुनुपर्छ खाने पानी सधैँ छोपेर राख्नुपर्छ नि।
10: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
11: लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवलमा आधुनिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शुरू भएको अनुरोध।
12: बुटवलमै पहिलो पटक शरीरको कुनै अङ्गको लिगामेन्ट च्यातिएको स्पोर्ट्स इन्जुरियन्स साथै हाड जोर्नी नसा तथा ट्रमा वा दुर्घटना सम्बन्धी बिरामीको उपचार बीएनबी हस्पिटल काठमाडौँबाट अर्थोस्कोपी सर्जरी र स्पोर्ट्स इन्जुरीमा फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टरबाट आधुनिक विशेषज्ञ सेवा शुरू भएको छ। विशेष गरी हाड जोर्नी भाँचिएको लिगामेन्ट च्यातिएको बिरामीहरूको अपरेशन दूरबीनको माध्यमबाट गरिन्छ।
11: साथै वीर अस्पताल काठमाडौँका फिजिसियन डाक्टरबाट उपचार सेवा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट इको ईसीजी को माध्यमबाट मुटु तथा छाती रोगको उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदै पूर्ववत सेवाहरू
12: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा
11: स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा
12: जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ सेवा
11: शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा
12: दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ सेवा
11: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा
12: हिस्टो साइटो बायोप्सी हार्मोन जाँच गर्ने प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सहितको प्रयोगशाला
11: फिजियोथेरापी विशेषज्ञ सेवा
12: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहितको इन्डोर सेवा सञ्चालन भइरहेकोले निजी क्षेत्रको जेठो एस हस्पिटलबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।
11: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ। साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली फोन 071-531-641 र 535-641।
13: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डलेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
12: तसर्थ वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
14: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
13: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
12: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
13: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
14: सुन्नुहोस् त,
12: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
15: वन डडेलो रोकौं, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौं।
13: अनुरोधक
16: श्री शक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मोर्मी कपिल वस्तु, अध्यक्ष नाथुराम चौधरी थारू, मोबाइल 98470-83438 तथा समस्त वन उपभोक्ता समिति परिवार।